0: ஆஹா, ரொம்ப டச் பண்ணிட்டாங்கப்பா. ஆக்சுவலாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஹிந்திக்காரங்க இருக்காங்க. அவங்க இப்போ எதுவுமே புரியாமல் முழிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஹிந்தியில் ஒரு போயம் பை நீத்துக்குமாரி, செம்ம காமெடியான போயம், பட் டச்சிங் ஆல் தி சேம். எல்லாரும் சுனியே.
1: आज की नारी जितनी लगती है प्यारी, आज की नारी जितनी लगती है प्यारी, उतनी ही पड़ सकती है गुंडों पर भारी, उतनी ही पड़ सकती है गुंडों पर भारी. नारी को कमजोर ना समझो, नारी को कमजोर ना समझो, नारी शक्ति भी रखती है, नारी शक्ति भी रखती है. नारी तो है फूल है लेकिन, नारी तो है फूल है लेकिन, मन में अग्नि भी रखती है, मन में अग्नि भी रखती है. आज की नारी ना है किसी मर्द से कम, आज की नारी न है किसी मर्द से कम, अपनी रक्षा करती है मरते दम, अपनी रक्षा करती है मरते दम. सदियों से होता आया है नारी पर अत्याचार, सदियों से होता आया है नारी पर अत्याचार, उसने आत्मरक्षा के लिए उठाया है तलवार, उसने आत्मरक्षा के लिए उठाया है तलवार. कोई उनको हाथ लगाकर तो देखे, कोई उनको हाथ लगाकर तो देखे, कर देती है ढेर लगाकर कराटे चौप, कर देती है ढेर लगाकर कराटे चौप. पता नहीं क्यों मर्दों को चढ़ा रहता है नारियों से पिटने का शौक, पता नहीं क्यों मर्दों को चढ़ा रहता है नारियों से पिटने का शौक. नारी के अंदर है ऐसी शक्ति, नारी के अंदर है ऐसी शक्ति, जो जरूरत पड़ने पर ही जगती, जो जरूरत पड़ने पर ही जगती. जब टूट जाती है सहनशीलता की सीमा, जब टूट जाती है सहनशीलता की सीमा, भूल जाती है वो रिश्तों की सीमा, भूल जाती है वो रिश्तों की सीमा. कई नारियों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए दे दी है जान, कई नारियों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए दे दी है जान. जाते जाते बढ़ा दी है समाज में सब नारियों की मान, जाते जाते बढ़ा दी है समाज में सब नारियों की मान. जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, इन नारियों का नाम रहेगा, इन नारियों का नाम रहेगा. आज की नारी नहीं सहेगी अन्याय, आज की नारी नहीं सहेगी अन्याय, क्योंकि देश में उन पर हो रही है जुल्म असहाय, क्योंकि हो रही है देश में उन पर जुल्म असहाय. हत्यारों की इस नगरी में, हत्यारों की इस नगरी में, नहीं रहेगी बनके वो दुखियारी. आ जाए उस पर कोई विपत्ति अगर, आ जाए उस पर कोई विपत्ति अगर, आत्मरक्षा के लिए वो नहीं रहेगी किसी पर निर्भर, आत्मरक्षा के लिए अब नहीं रहेगी वो किसी पर निर्भर. इस दुनिया में वो नहीं करेगी किसी पर विश्वास, इस दुनिया में वो नहीं करेगी किसी पर विश्वास, क्योंकि वो जानती है, क्योंकि वो जानती है कि उसे मिलेगी सिर्फ विश्वासघात, क्योंकि उसे मिलेगी सिर्फ विश्वासघात. अपनी रक्षा के लिए वो लड़ेगी जब तक रहेगी अंतिम दम, अपनी रक्षा के लिए वो लड़ेगी जब तक रहेगी अंतिम दम. तब भी आत्मविश्वास न होगी उसमें कम, तब भी आत्मविश्वास न होगी उसमें कम. आज की नारी की है अपनी शान, आज की नारी की है अपनी शान, आत्मरक्षा के लिए दे देती है जान, आत्मरक्षा के लिए दे देती है जान.
2: ப்ரோமோ கேட்க போறோம். அது எழுதினது நம்ம கவி கோயில் வி சீதாலட்சுமி, அண்ட் பாடினது ஆல் தி இசை குயில்ஸ் அர்ச்சனா, நீத்து, சக்தி, ஸ்வாதி, எல்லாம் நம்ம பசங்க தான். கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க.

नमस्कार, आप सबका स्वागत है एमओपी रेडियो में। मैं हूं डॉक्टर अनुपमा, प्रवक्ता एमओपी वैष्णव कॉलेज। आज मैं आपके सामने रेडियो का इतिहास और महत्व के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगी। भारत में रेडियो के आगाज की बात करें तो वो 23 जुलाई 1927 का दिन था, जब मुंबई में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के रूप में इसकी दस्तक सुनने को मिली थी। इसका उद्घाटन तब भारत के वाइसरॉय रहे लॉर्ड इरविन ने किया था। इसके एक महीने बाद 26 अगस्त को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग के कलकत्ता केंद्र का भी शुभारंभ हुआ। वही इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सेवा के दिल्ली केंद्र से प्रसारण जनवरी 1936 से शुरू हुआ था। इसी साल इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था और इसी दिन से ऑल इंडिया रेडियो के लाहौर, लखनऊ और मद्रास केंद्रों ने ऑल इंडिया रेडियो पर कार्यक्रम प्रसारित करना शुरू कर दिया था। भारत में रेडियो की शुरुआत से आजादी तक कुल 9 रेडियो प्रसारण केंद्र थे। भारत विभाजन के बाद लाहौर, पेशावर और ढाका केंद्र पाकिस्तान में चले गए और यहाँ दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, लखनऊ और त्रिची केंद्र ही बच रह गए। अब तक रेडियो अपनी पहुंच से लोगों के बीच में कौतूहल के साथ साथ जरूरत का केंद्र भी बन चुका था। आजादी के पहले 3 जून को भारत के विभाजन के प्रस्ताव पर लॉर्ड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू के भाषण को पूरे देश ने रेडियो पर ही सुना कि उनका वो देश जो अब तक एक हुआ करता था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान नाम के दो टुकड़ों में बटा गया है। अगर रेडियो ना होता तो एक साथ पूरे देश में इस बात को पहुंचाना आसान नहीं होता। इसके बाद रेडियो में दूसरे मील के पत्थर के दौर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का राष्ट्र के नाम संदेश मिलता है। आजादी के बाद गांधी का ये संदेश 12 नवंबर को प्रसारित किया गया था। आज भी संग्रहालय में ये रिकॉर्डिंग सुनी जा सकती है। धीरे धीरे रेडियो ने आम लोगों के बीच अपनी पहुंच बनानी शुरू कर दी। आजादी के बाद हरित क्रांति, सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने में रेडियो की अच्छी खासी भूमिका रही है। इसका सबसे ज्यादा फायदा अनपढ़ किसानों को मिला, जो रेडियो में आने वाले खेती से जुड़े प्रसारणों को मनोयोग के साथ सुनते थे और उन बातों में अमल करके उसी हिसाब से फसल बोते थे। किसानों के लिए कार्यक्रमों के अलावा रेडियो ने परिवार कल्याण, मौसम के बदलाव से होने वाले बीमारियों के इलाज और उनसे बचने के उपाय भी बताने शुरू किए। कुल मिलाकर संचार के इस माध्यम ने एक तरह से दूर दराज के गांवों में रहने वाले उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, जिन तक उनके हितों की बातें या तो पहुंचती ही नहीं थी और जब पहुंचती थी तब तक उनका कोई मतलब नहीं बचता था। रेडियो के लोग प्रसिद्ध होने की एक वजह ये भी थी कि इसका इस्तेमाल बड़ा आसान है। एक रेडियो सेट बैटरी से चलता है, इसलिए बिजली होने ना होने या आने जाने से बेफिक्र ये माध्यम कहीं भी आसानी से ले जाकर सुना जा सकने वाला है। और तो और इसे सुनने के लिए एक जगह बैठने की भी जरूरत नहीं है। अगर आजादी के बाद की बात करें तो देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सरकारी नीतियों और विकास की योजनाओं को हर आम और खास तक पहुंचाने की। विकल्प तलाशे जाने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि सरकार की हर बात सीधे आम जनता तक पहुंचने लगे और ये तलाश रेडियो के सामने आकर थमी। नतीजा ये हुआ कि भारत के पहले सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑल इंडिया रेडियो की पहुंच को और व्यापक बनाने के उद्देश्य से रेडियो के प्रसारण केंद्रों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। इसके पीछे ये वजह ये भी थी कि
विभाजन के बाद जो तीन केंद्र भारत से कट गए थे वहां की जनता तक भी प्रसारण पहुंच पाए। अब तक इसका एक और नाम आकाशवाणी भी रखा जा चुका था। सरकार की इसी योजना को अमल में लाने के क्रम में आकाशवाणी के जालंधर, श्रीनगर, पटना, कटक, शिलांग, नागपुर, अमृतसर, विजयवाड़ा जैसी जगहों पर रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया। आकाशवाणी के लेह और तवांग अब भी देश में सबसे ऊंचाई पर स्थित केंद्र है। भारत की सीमावर्ती इलाकों में इन केंद्रों की जरूरत चीन के साथ हुए युद्ध के दौरान और भी बढ़ गई, क्योंकि चीन के रेडियो ने युद्ध के दौरान अफवाहें फैलानी शुरू कर दी थी। सैनिकों का मनोबल ऊंचा रहे और उन्हें हर पल ये एहसास रहे कि देश की जनता तन मन धन से उनके साथ है, प्रसारण क्षमता बढ़ाना और भी जरूरी हो गया। इस दिशा में तुरंत फैसला लेते हुए ट्रांसमीटर के साथ साथ पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम ऐसी जगहों पर प्रसारण की शुरुआत की गई। यही नहीं, सभी प्रसारण केंद्रों की क्षमता बढ़ाई गई और उनके कार्यक्रमों में परिवर्तन भी किए गए ताकि मौके की नजाकत को देखते हुए आम लोगों तक सही सूचनाएं पहुंचे। आज भी रेडियो का मुख्य उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना, काम की बातें बताना और जरूरी सूचनाएं पहुंचाना बना हुआ है। अपनी इस भूमिका को बखूबी निभाने के लिए रेडियो संगीत, नाटकों और बातचीत जैसे कार्यक्रमों के जरिए लोगों से जुड़ा हुआ है कि ताकि देश की हर गतिविधि, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो या फिर सामाजिक हो, लोगों तक पहुंचती रहे। और इसी लकीर को पकड़े हुए रेडियो 1927 से आज तक बिना रुके थके चलता जा रहा है। और अब मैं रेडियो की भाषा के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। रेडियो की खास बात ये होती है कि इस माध्यम के जरिए किसी बात को जानने के लिए पढ़े लिखे होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। रेडियो एक निरक्षर शख्स को भी उतनी ही बातें बताने में कामयाब रहता है जिनका कि एक पीएचडी पास को। वजह साफ है, ये माध्यम सुना जाता है। वहीं अगर अखबार, टीवी, वेबसाइट, मैगजीन की बात करें तो यहाँ काम की बातें अक्षरों के जरिए लिखी जाती है और समझाई जाती है, जो एक निरक्षर के लिए बेकार है। रेडियो सुना जाता है, इसलिए यहाँ के लिए जो भी लिखा जाए वो आसान हो, ताकि सुनते ही श्रोता को समझ आ जाए कि आखिर बात चल क्या रही है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि ये ना तो अखबार या वेबसाइट है जहाँ दोबारा देखकर पढ़ लेने की सहूलियत होगी, ना ही ये टीवी है कि खबर जानने की चाहत रखने वाला दूसरे चैनल पर वो चीजें ढूंढ ले, या फिर टीवी पर दिखाई जाने वाली चीज अगर वीओ से समझ न आई तो ग्राफिक या विजुअल के सहारे समझ लेगा। ऐसे में रेडियो के लिए लिखी गई भाषा इतनी सहज, आसान और सुस्पष्ट हो कि सुनने वाले को उसे समझने के लिए दिमाग पर जोर बिल्कुल भी न डालना पड़े। अब रेडियो के प्रसारण में किसी खबर को दोबारा सुन पाने का विकल्प तो होता नहीं है, इसलिए उस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले और उसके प्रसारण से जुड़े सभी लोगों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि प्रसारित करने के लिए जो भी स्क्रिप्ट लिखी जाए वो सुनने वाले के लिए बोझिल ना हो, भाषा आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए, वाक्य छोटे छोटे और अपने आप में पूरे होने चाहिए, कठिन शब्दों के इस्तेमाल से हमेशा बचना चाहिए। स्क्रिप्ट में भारी भरकम आलंकारिक शब्दावली का इस्तेमाल तो बहुत आसान है, लेकिन अगर वो सुनने वाले की समझ में ही ना आ जाए तो वैसा लिखने का क्या फायदा। एक अच्छी रेडियो स्क्रिप्ट का मकसद तभी पूरा होता है जब श्रोता सुनते ही जहन में उस चीज की कल्पना कर ले जो आप बताना चाहते हैं। कठिन शब्दों से लिखने वाले का बौद्धिक ज्ञान तो अच्छा लगता है, लेकिन सुनने वाले के लिए वो उबाऊ हो जाता है।
अगर कुछ पुरानी किताबों में लिखे भारी भरकम और लंबे चौड़े शब्दों को देखा जाए, जैसे द्वंद्वात्मक, गवेषणात्मक, आनुषांगिक, अन्योन्याश्रित, प्रत्युत्पन्नमती, जाज्वल्यमान, अध्यावसाय, यथोचित, कतिपय, पुरातन, अधुनातन आदि से पता चलेगा कि आज की पीढ़ी को इन शब्दों के मतलब समझने के लिए न जाने कितने डिक्शनरियां खंगालनी पड़ेगी। रेडियो के लिए आसान शब्दों के साथ साथ कम समय में अपनी पूरी बात कहने की भी चुनौती है। ऐसे में खास तौर पर खबर लिखते वक्त हम बड़ी संस्थाओं जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसे शब्दों की जगह WHO, UN, CBI लिखकर काम चला सकते हैं। वैसे भी आज पूरे नाम से ज्यादा इनके छोटे रूप प्रचलित है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर जगह शब्दों के छोटे रूपों का इस्तेमाल करने लगे, जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच या एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी विश्व स्तरीय संस्था के पूरे नाम ही प्रचलन में है, तो इन्हें वैसा ही लिखा जाना चाहिए। कई बार डेडलाइन के दबाव में आकर जल्दबाजी में मुहावरों जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे ख्यातव्य है, ज्ञातव्य है, मैनेजर गैर तलब और है वगैरह। इनका प्रयोग आसान तो लगता है, लेकिन इन्हें सुनने से खबर बोझिल और बासी लगने लगती है। साथ ही एक शब्द है द्वारा, जिसका इस्तेमाल आज रेडियो में ठटल्ले से हो रहा है, जिसे सरकार द्वारा किसानों का कर्ज माफ किए जाने की घोषणा की गई है। जरा सोचिए, क्या असल जिंदगी में घर पर हम बातचीत के दौरान कभी द्वारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? क्या हम कभी कहते हैं कि आलू, मटर, टमाटर पापा द्वारा, भैया द्वारा, दीदी द्वारा या मम्मी द्वारा लाए गए हैं? इस लाइन को सीधे शब्दों में सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया कहा जा सकता है। ये बात कहने में कम वक्त लेगा और सुनने वाले को इसे समझने के लिए अपने दिमाग को छोड़ने की जरा भी जरूरत नहीं होगी। एक बात हमेशा याद रखे कि रेडियो की भाषा मंजिल तो नहीं है, लेकिन रास्ता जरूर है। मंजिल तो आपकी बात को श्रोताओं तक पहुंचाना है। ऐसे में रास्ता जितना सरल होगा, मंजिल तक पहुंचना भी उतना ही आसान होगा। क्योंकि यहाँ दोबारा आपकी बात सुनने का विकल्प नहीं है, इसलिए आप जो भी कहें एक ही बार में कहें, और जो भी कहें वो साफ साफ समझ में आए। धन्यवाद।